0: Francisco Juan Petolera.
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर।